अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

0: जस्तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो पाप मा ठूलो झमेला।

कतग दिग न था तुम न था झटक तान न था जिंदा तुम कुत्ते दादा जिंदा शादर के दादा जिंदा दादा तिन्ना तिन्ना शादर के दादा जिंदा दादा तिन्ना जिंदा दादा जिंदा दादा जिंदा दादा जिंदा तरीला तरीला तरीला

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-5504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिब्बे ढुंगा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन्छ आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झनुहोस् बाकीलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुंवर संपर्क 98 160 62 983 98 5 60 52 855 समझनुहोस् है बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार
1: आयो है मासू ताजा ताजा मासू।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारी में जाने मनसाय बनाई रहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरा में रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेन पावर कंसल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई कतार साउदी मलेसिया सहित रोमानिया लगायत का यूरोपियन राष्ट्र का विभिन्न कंपनी में वैदेशिक रोजगारी को सुवर्ण अवसर कुक किचन हेल्पर वेटर सिक्युरिटी गार्ड फैक्ट्री वर्कर डेलीवरी बॉय ड्राइवर हाउसकीपिंग हेल्पर क्लीनर लगायत का क्षेत्र में वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्नको सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मैन पावर कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड नागढुंगा पोखराट कास्की फोन नंबर 0161553071 9807081234 9750577123 व्हाट्सएप नंबर 9811771023।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट सल्फर ने ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लागि वेब सर्फर भर पर्दो विश्वास लिनु हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
2: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

0: था थाईला थप्पा डालियो लाल बाप खाली काब थाईला बक्के खालियो बत्तवाईली गावले काईलोली हो बत्तवाईली गावले काईलोली हो नमस्कार वो आल अधिकारी तपे आज आइले उठते उल्टा रेडियो सफलता
1: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
2: सुन्न मन लायो
3: tararara tararara tararara tararara macha unge tin namaskar